0: अन्नपूर्ण चलचित्र मन्दिर बेसी सहर, सम्पर्क 97497 38 798।
1: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 7 बजेको छ।
2: Extreme energy drink. Taste the difference. Feel the energy.

0: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 9 बजेको छ
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी
2: मर्सिंग एफएम
3: 95 मेगाहर्ज
4: समय किसान पाइप प्रोडक्ट्स प्राली को हो
5: राष्ट्र को शान किसान
4: अ कंप्लीट पाइपिंग सॉल्यूशंस

0: Mania.
1: Extreme energy drink.
2: एक हाथ में धर्म को शास्त्र और को हाथ में अन्याय को अंत करने शक्ति।
3: अन्नपूर्ण चलचित्र मंदिर बेसी शहर में यही असोज 9 गते शुक्रवार देखि भव्य प्रदर्शन भइरहेको छ। नेपाली चलचित्रहरू मध्याह्न 12 बजे आचार्य।
4: जसले सजिले झटसँग मारिदिन्छ ऊ क्रिमिनल, जसले बिस्तारै मार्छ त्यसलाई तिमहरू प्रेमी सम्झिन्छौ हैन।
3: कलाकारहरू निखिल उप्रेती, पूर्णिका सिजापति, दीपराज राणा, प्रमोद अग्रहरी लगायतका कलाकार

0: तानिमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले राजीव
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 12 बजे को छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक एक बजे को छ।
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी।

स्वर्गीय न भानाऊं स्वर्गीय न भानाऊं राष्ट्र कवि दीहुं दई सम्मान गराऊं।

0: एक हाथ में धर्म को शास्त्र और को हाथ में अन्याय को अंत करने शक्ति।
1: अन्नपूर्ण चलचित्र मंदिर बेसी शहर में यही असोज 9 गते शुक्रवार देखि भव्य प्रदर्शन भइरहेको छ। नेपाली चलचित्रहरू मध्याह्न 12 बजे आचार्य।
2: जसले सजिले झटसँग मारिदिन्छ ऊ क्रिमिनल, जसले बिस्तारै मार्छ त्यसलाई तिमहरू प्रेमी सम्झिन्छौ हैन।
1: कलाकारहरू निखिल उप्रेती, पूर्णिका सिजापति, दीपराज राणा, प्रमोद अग्रहरी लगायतका कलाकार

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 4 बजेको छ
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 5 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी